ये आवाज़ है जो अमन की है, ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: मजबूत करता है, बालों की नशोनुमा को बढ़ाता है, बालों को सिल्की और उनका जो ओरिजिनल स्याही कलर है
1: ऐसी बात
0: वो भी काम उसको भी कायम रखता है। इसमें एक नहीं बहुत से फायदे, ये टेंशन पे, डिप्रेशन पे, स्ट्रेस पे ये काम करेगा।
1: ठीक है,
0: ठीक है, इसका ये फायदा है। बाकी अब इसको इस्तेमाल जो है वो तो जाहिर है कि आप इसे सब्जी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके खुशक पत्ते जो हैं उनको पाउडर करके और आप उनको कैप्सूलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सुबह शाम एक एक कैप्सूल ले लें पानी से, या फिर इसकी गोलियां और वो भी इस्तेमाल हो जाते हैं। बाकी पेशेंट के पास, मरीज के पास जब पेशेंट आता है तो वो फिर देखा जाता है कि उसकी नोयत क्या है।
1: ऐसी बात है, जब भी हकीम के पास कोई पेशेंट आता है,
0: इसीलिए कहा जाता है कि जब आप कोई जड़ी बूटी या कोई आपका इरादा बनता है, आप खाली सुनी सुनाई बातों पे ना करें, आप एक दफा अपने मुआलिज से जरूर मशवरा कर
1: लाजमी बात है।
0: क्या पता आपकी वो जो उस चीज की ज्यादती है वो सूद मंद भी है कि नहीं है।
1: ऐसी बात
0: तो मुआलिज कम अज कम आपको मशवरा दे के बता सकता है कि आपको कितनी मिकदार में लेनी है और इसे कब तक लेना है।
1: ऐसी बात है बिल्कुल।
0: बाकी इसकी अभी चाय की बात हो रही थी, तो आप इसकी चाय भी बना सकते हैं, इसके खुशक पत्तों की, या कावा भी बना सकते हैं, तो वो आपके मैदे की भी सलाह करेगा।
1: ठीक है,
0: आपके बढ़े हुए पेट पे भी काम करेगा, आपकी जो जायद चर्बी है उसको भी जिस्म से खारिज करने में मदद करेगा, और आपका वजन जो है वो बढ़ेगा नहीं बल्कि मुतवाजन।
1: ऐसी बात है बिल्कुल।
0: तो बाकी हर चीज है, लेकिन उसका इस्तेमाल का तरीका वो जरा मुख्तलिफ होता है। बच्चे हैं तो बच्चों को भी एक मिकदार में दिया जाता है, बड़े हैं तो बड़ों को भी एक उसकी मिकदार है, उससे ज्यादा नहीं पड़ा जाएगा। और जहां तक है कोशिश करें कि या तो फिर आप खुद लें
1: जी
0: और इसको खुशक कर लें, नहीं तो आजकल तो इसकी जो पैकिंग है वो भी आई हुई है बाजारों में,
1: और
0: कंपनियां इसको पैकिंग में करके और बड़ा खुशनुमा और अच्छे खासे उन्होंने अपने रेट्स भी रखे हुए
1: हैं,
0: ये इस्तेमाल हो रहा है। बाकी इसको हर एक चीज को, चाहे वो देसी है चाहे जो भी है, लेकिन उसको हतमी इलाज ना समझे। उसको आप एक टेम्परेरी कह लें कि आप उसको एक खुराक के तौर पर इस्तेमाल करें, और उसकी अफादियत जानने के लिए या उसके नुकसान जानने के लिए अपने मुआलिज से मशवरा कर लें, क्योंकि इसको रूटीन से नहीं लेना चाहिए।
1: ऐसी बात है,
0: एक आदमी रोजाना ले रहा है तो कम से कम वो मुआलिज से मशवरा कर ले कि मेरे लिए ये सप्लीमेंट जो है ये जरूरी भी है कि नहीं है, या इसकी मिकदार कहीं मुझे इसकी ज्यादती जो है कोई नुकसान तो नहीं देगी। तो बाकी कुदरत ने तो हमें बहुत सी गिजाएं दी हैं, हम उसकी गिनती नहीं कर सकते इतनी ज्यादा है। बाकी उनमें से ये भी एक है मोरिंगा, जब हम आगे चलेंगे तो बेशुमार ऐसी खुराक, ऐसी सब्जियां, ऐसे फल सामने आएंगे कि जिनको हम बिल्कुल ही आम सा समझते हैं,
1: ऐसी बात है,
0: लेकिन वो हमारे जिस्म को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं।
1: ऐसी बात है बिल्कुल।
0: बाकी इसका जो है, इसमें जाहिर है विटामिन है, फाइबर्स है, इसमें पोटाशियम है, इसमें बेशुमार मरकबात,
1: बिल्कुल ऐसी बात है,
0: लेकिन इसको आप फिर भी हतमी तौर पे नहीं ले सकते हैं कि मैं इसको शुगर के लिए हतमी तौर पे ले लूं, मैं इसे जिगर के लिए ले लूं, मैं इसे खून की कमी के लिए ले लूं, या मैं इसको किडनी प्रॉब्लम में ले लूं। आप लेंगे लेकिन एक मुनासिब मिकदार में लेंगे और अपने मुआलिज के मशवरे से लेंगे, फिर आप इसका असल जो बेनिफिट्स है उससे जो है वो आप फायदा उठा सकते हैं। तो बाकी कहने का मकसद यही है कि आप खुद अपना ध्यान रख सकते हैं, लेकिन उसमें एक जो चीज है देखने वाली वो यह है कि आप अपनी खुराक को सबसे पहले देखें।
1: हाँ जी, ऐसी बात,
0: क्या आपकी जो खुराक है वो मुतवाजन है, उसमें वो चीज जो आपकी बॉडी की तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको तो कम से कम पूरा करें ना, आपके मैदे पे, आपके दिमाग पे, आपके दिल पे बोझ ना बनाए, आपको एक सुकून महसूस हो, आपके मर्ज में एक इत्मीनान, एक तहम्मुल हो, और दूसरा यह है कि आपका मर्ज आस्ता आस्ता फिर कंट्रोल हो। तो कहने का मकसद यही है कि आप कोई भी पढ़ते हैं, लिटरेचर में सुनते हैं, लेकिन आप उस चीज को आंखें बंद करके अपने पे अप्लाई ना शुरू कर दें, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक मुआलिज से पहले मशवरा करें, उसके बाद उसे इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आप उसके बेनिफिट लेंगे। बाकी अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ो में रखे और जो बीमार हैं उनको सेहत कामला अता फरमाए।
1: आमीन। सभी खेल खवातीन हजरात, आप वाबस्त हैं रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ। सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं जो कि अलशिफा दवाखाना के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में डेली 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पेश किया जाता है। वो मेरी बहने, वो मेरे भाई जो कि मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला हैं और एक उम्मीद की तलाश में है। जनाब, हर बंदे को एक उम्मीद की तलाश होती है क्योंकि आपको ये बीमारी इतना ज्यादा परेशान कर देती है कि आप मायूस हो जाते हैं। आप एक ऐसी रोशनी के इंतजार में होते हैं, एक ऐसी उम्मीद के इंतजार में होते हैं कि हमारे ज्यादा पैसे भी नहीं आएंगे, क्योंकि सामईन इकराम आप इतने दूर दूर जाके इलाज कराते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, लाहौर जाते हैं, पिशावर जाते हैं, आजकल किराए भी इतने ज्यादा हैं, आपके किराए भी ज्यादा लगते हैं और साथ इतनी महंगी महंगी आप दवाएं लेते हैं, तो बहुत सारे लोग तो मायूस हो चुके हैं कि अब तो मेरी बीमारी का इलाज भी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है जनाब, आपकी कितनी भी पुरानी बीमारी है, आपकी बीमारी 20 साल पुरानी है, 25 साल पुरानी है, आपने कहीं से टेस्ट वगैरह कराए हैं, आपके पास रिपोर्ट्स हैं, आप अपनी रिपोर्ट्स के हमरा अलशिफा दवाखाना तशरीफ लाएं। इंशाल्लाह हकीम साहब रोजाना सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अपने क्लिनिक में मौजूद होते हैं, यानी कि अलशिफा दवाखाना पर। अलशिफा दवाखाना का एड्रेस भी नोट फरमाइए, अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नस ट्रैफिक प्वाइंट, टांग सिटी। बिल्कुल जनाब, ग्रान वर्दुन को दखल वरदास भी 600 यू बीमारी दुम रजिया परेशान कड़ी भी 600 मायूस छवि भी अगले वजन। बिल्कुल जनाब, सड़ैवर न मायूस चे डीजिया लजुन मोहरत कड़ी भी डी रजिया खर्चों में पकड़े भी अगले लवे चिकम सासो द बीमारी दा अगे न सासू डी रजिया परेशान की जो चे आया चिदी इलाज बहुत चेर तई खोस देश किस्म हम दा मसला निश्ता सासो हर किस्म बीमारी इलाज पर शिफा दवाखाने बने की ग्रान वर्दुन को अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी के हकीम साहब रोजाना सबाम 8 बजे नवाला तमखाम सलोर बजे पूरे अखल क्लिनिक मंदे मौजूद भी अलशिफा दवाखाने बांधे दा चिकमदा अलशिफा दवाखाने एड्रेस देदा हम दरसरा नोट कई अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी। तो बिल्कुल जनाब, हकीम सैयद मशकूर मशाह साहब ने सर ऑन एयर स्टूडियो तशरीफ फरमाहिन सेहत का पैगाम सुनने पे जी गाल थी पे अक्सर इवें हों कोई इस किस्म की बीमारी होंगी है जो इलाज करा करा के तुसा मायूस थी वेंदे वे थक वेंदे वे भाई अनस बिरा मैं तो ये बीमारी का बहुत ज्यादा इलाज कराया चूंकि अजकल किराए भी ज्यादा हैं, तो इस्लामाबाद वेंदे वे या लाहौर वेंदे वे या पिशावर वेंदे वे पहले पहले तुम्हारी किराया ज्यादा लग पैन उन्होंने बाद एडे महंगे महंगे दवाइया हैं 10,000 की दवाई है पई 15,000 की दवाई है पई तो सौ गिन दे ते आखिर तो बंदा आके मायूस थी वेंदे भाई हूं तो मैं बीमारी दे इलाज करे ही खड़ा तो ये तला इलाज है नहीं जी ऐसी कोई गल नहीं होंगी देसी तरीका इलाज दे विच मौत दे इलावा इंशाल्लाह उम्मीद है जो हर बीमारी का इलाज मौजूद है। गाल ये पई जो भाई वक्त बीमारी का इलाज कराया मने चाहे तुरी बीमारी 20 साल पुरानी है चाहे 25 साल पुरानी है जेडे तुरे पुराने रिपोर्टा हैं और घिन के ते अलशिफा दवाखाना रोजाना खुला हुआ है तो फजर वाले जेड़ है 8 बजे को चाह के शामी 4 बजे तक आ सकते हैं। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस्त ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी दे विच ते हकीम साहब को आपका इलाज करा सकते हैं। सो चलेंगे जी, आपकी कॉल्स भी लेंगे, आपके SMS भी पढ़ेंगे। कॉल्स के लिए नंबर नोट फरमाइए 0319-55-23-404 पर और इसके अलावा 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। 0319-55-23-404 पर कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं और अगर आप PTCR नंबर पर कॉल करना चाहें तो 0963-511-488 पर भी कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक देवे जी, कौन दे कितो गाल करन दे पेवे जी? रोशन लला, क्या पूछना चाहते हो हकीम साहब दे कोलो? ठीक है हकीम साहब, बने ही सवाल बारे दसे ने पिया ते दूजा हकीम साहब थोको वाती दसा रहे हैं एक दफा जी रिशाद बारे गल। हाँ जी हकीम साहब, आप कौन सी दूसरी चीज के गंदोले के बारे में बात कर रहे थे? आप
0: सुहांजना ही है।
1: हाँ सुहांजना, और दूसरी आप एक और जड़ी बूटी के बारे में बात कर रहे थे। ہاں کوئی گونڈی کے بارے میں آپ آ رہے گئے ایسی کوئی چیز تھی تو
2: ہمارے علاقے میں ہوتا ہے
0: جو بات ہوئی ہے سمبل پہ
1: ہاں سمبل سمبل کے بارے گال کرنے پہ تسا ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی روشن بھائی حکیم صاحب نے جانا سمبل کے بارے میں بات کی ہے اس کے علاوہ
0: میرا سارا جو رہا ہے ٹاپک وہ سارا سوانجنے پہ
1: سوانجنا ہے سمبل ہے
0: سردوں میں سمبل ہے
1: ایسی بات ہے سو خواتین و حضرات اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے آپ حکیم صاحب سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر ایس ایم ایس کال کے لیے اور اگر آپ پی ٹی سی ایل نمبر پر ہمیں جوائن کرنا چاہیں حکیم صاحب سے بات کرنا چاہیں مشورہ کرنا چاہیں تو 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں ایک میسج ہے حکیم صاحب کہ السلام علیکم بھائی میں ٹانگ سے اقرا بات کر رہی ہوں میرے جوڑوں میں بہت درد ہوتا ہے میری عمر 16 سال ہے ہاتھ پاؤں کے جوڑوں میں بہت درد ہوتا ہے اس کے بارے میں حکیم صاحب سے پوچھیں
0: دیکھیں عمر حالانکہ اتنی نہیں ہے 16 سال کی عمر کوئی عمر تو نہیں ہے
1: ہاں جی
0: تو دوسرا یہ ہے کہ اب ہاتھوں میں جوڑوں میں اگر درد ہو رہا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہے
1: ایسی بات ہے ہاں
0: اس میں آپ کا میدا ہو سکتا ہے کہ جو اعصاب ہیں جو نسیں ہیں یا پٹھے ہیں وہ کمزور ہو سکتے ہیں آپ دماغی طور پر بہت زیادہ اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو کوشش کیجیے گا کہ آپ کسی کے ساتھ اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ دواخانے پہ ضرور وزٹ کریں تاکہ اصل وجہ جان کے پھر اس کے مطابق دوائی تجویز ہو
1: بالکل ایسی بات ہے السلام علیکم السلام علیکم کیویں حال ہے اللہ ایک تو تھوڑا آواز موکم آنا بھی ہے سارے پاس اللہ کا شکر ہے جی کون تھے کتوں گال کریں پہ وے ڈبر کو گال کریں پہ وے جی کیا پوچھنا چاہتے ہوئے حکیم صاحب دے کولوں کیا پتا کرنا چاہتے ہوئے حکیم صاحب دے کولوں کوئی صحت دے حوالے دے نال سوال ہے پیو تھوڑا
2: جی سوال ہے
1: بڑا دیکھن پوچھو
2: میرے گونڈے گونڈے بات کریں گے بول لے
1: ٹھیک ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھیک ہے ریڈیو سنتے رہو ہاں بالکل ان کا علاج ہے بالکل جی دے علاج موجود دے شفا دواخانے بندے سبا ملاڈ بج نوال حکیم صاحب چلور بجو پر موجود بھی کلینک بندے او دا دردو ڈیر بہترین علاج موجود دے انشاءاللہ چلو سید ابرور ہر قسم دردوں علاج الشفا دواخانے بندے بالکل موجود دے بس تشریف راوی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ کے سید جناب ان شاء اللہ ہر قسم بیماری اور دردوں کو اسپیشلسٹ دے الشفا دواخانہ بالکل جناب چسم رحم دہ سے خویاں ابرون دی چ دردوں مسائل ہے چیرے دردوں مسائل دی زیادہ دردوں میں بھی ان شاء اللہ ہر قسم درد علاج پر الشفا دواخانے بندے موجود دا اور الشفا دواخانہ الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے حکیم صاحب اور صبح مل 8 بجے نوالا دمخام اور 7 بجے پورے پخپل کلینک بندے یعنی کہ الشفا دواخانے بندے موجود بھی اور مریضانو چیک اپ آئینہ جاری ساتھی سو ایک اور کالر ہیں حکیم صاحب ان کی بھی سن لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام اللہ کا شکر ہے میرے بھائی کونر کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی ماسٹر صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ میرے بھائی آواز آپ کی بہت زیادہ کٹ رہی ہے ابھی آ رہی ہے ذرا اونچا بولیے گا ہاں ہاں ابھی آ رہی ہے ماسٹر صاحب آپ کی آواز جو ہے بہت زیادہ کٹ رہی ہے آپ اپنی جگہ چینج کر کے ہمیں کال کریں اسی نمبر پر یا پی ٹی سی ایل نمبر پر 0963-511-488 پر السلام علیکم السلام علیکم جی میرے بھائی کونر کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی جو آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے صاحب, نیٹورک کا مسئلہ ہے. جو بھی ہمیں کال کر رہے ہیں سو آپ اپنی جگہ چینج کر کے کال کیجیے گا 09635114888 پر. سو حکیم صاحب, پہلے بھی ہماری بہن نے کال کی دردوں کے بارے میں بات کی, سو ان بھائی کو بھی چاہیے کہ یہ دواخانہ پر ہی آئیں.
0: دیکھیں بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ معالج کے پاس جاتے ہیں
1: ٹھیک ہے,
0: تو اس میں معالج کو یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ بہتر انداز سے تشخیص کر سکتا
1: ہے. ایسی بات ہے,
0: آپ کی اس کے سامنے مکمل ایک کیس ہسٹری آ جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ خالی ابھی تو یہ درد کا کہہ رہے ہیں, لیکن جب ہم معالج کے سامنے جاتے ہیں اور کیس ہسٹری سامنے آتی ہے تو اس کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے میدے کی کیا پوزیشن ہے, ان کے اعصاب کمزور ہیں یا نہیں ہے, یا اس سے پہلے انہیں کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا مرض تو نہیں جس کے اثرات ہیں, یا جو بیماری کوئی ایسی تو نہیں ہے.
1: ٹھیک ہے,
0: یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر طبیب جو ہے یا ڈاکٹرز ہیں ان کا پھر تجویز کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے.
1: ٹھیک ہے,
0: ایک تو اس میں سہولت مریض کو بھی ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ دیر تک اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں رکھنا پڑتا, پابند ہوں جی اس چیز کا. اس کے بہتر سے بہتر اثرات بھی جلدی آ جاتے ہیں اور مرض سے بھی جلدی چھٹکارا ملنے کی امید ہو جاتی ہے.
1: بالکل,
0: کوشش یہی کی جاتی ہے کہ اگر پیشنٹ دواخانے میں آئے تو اس کے لیے سہولت ہے بہت زیادہ.
1: چلیں ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی مسر صاحب پوچھے گا. ٹھیک ہے
2: جی, میرے گٹے درد کر رہے ہیں.
1: ٹھیک ہے, ہاں.
2: اور اس کے بعد میرا بیگ اتنا نہیں ہے, اس میں کبھی کبھی ایسی دیتے سیکنڈ پانچ سیکنڈ تک جس طرح اس پر چینج بسکٹ پھر سے ہے نا, اس طرح ہو جاتا
1: ہے. ٹھیک ہے,
2: اگر ہاں ہاتھ میں ٹھیک ہوئے یا نہیں ہے وہ ہاسپٹل اس طرح اگر ہمارے پاس ٹھیک ہوگی دس کا
1: ماسٹر صاحب, آپ کے دو مسئلوں کی سمجھ مجھے آ گئی, باقی آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے. سو
0: میسج کر
1: ٹھیک ہے, اور کمر میں درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ماسٹر صاحب آپ ریڈیو سنتے رہے ہیں, حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں آپ کے بارے میں.
2: جی
1: اللہ حافظ. جی حکیم صاحب, گھٹنوں کا درد ہے, کمر کا درد ہے, اور ساتھ ہی ہاتھ کی انگلیاں میٹھا میٹھا درد کرتی ہیں, تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور علاج کو بھی بتا دیجیے گا.
0: آپ ماسٹر صاحب سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ انہوں نے کوئی یورک ایسڈ وغیرہ کا اپنا ٹیسٹ کروایا ہو.
1: یہ بھی ہے,
0: ٹھیک ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے, بعض دفعہ کولیسٹرول لیول بڑا ہوتا ہے.
1: ایسی بات ہے,
0: بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اعصابی کمزوری ہو رہی ہوتی ہے. اب چیز یہ ہے کہ اگر تو ماسٹر صاحب نزدیک ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال لیں اور بالمشافہ ہی مل لیں.
1: چلیں ٹھیک ہے, یہ بہتر ہوگا,
0: یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ میں ان کو دیکھ کے اور ان کو ایک تفصیلن جو ہے جواب یا تفصیلن جو ان کا علاج بنتا ہے وہ ان کو بتایا جا سکتا ہے.
1: ایسی بات ہے, بالکل.
0: مے بی کہ یہ زیادہ بہتر رہے گا.
1: ایسی بات ہے جی,
0: کیونکہ یہاں پر ٹوٹکا یا نسخہ کوئی ایسی چیز کام نہ کر سکے.
1: ایسی بات ہے,
0: دیکھنا یہ ہے کہ ریزن کیا ہے, کس وجہ سے ہے, تو اس چیز کو پھر دور کریں گے تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا.
1: چلیں ٹھیک ہے. سو سامعین اکرام, اگر آپ کا بھی کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے تو آپ حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. سو اس کے علاوہ ماسٹر صاحب کے جو دردوں کے مسائل ہیں, ماسٹر صاحب حکیم صاحب کا تو یہی مشورہ ہے کہ آپ بالمشافہ کلینک پر آئیں, یعنی کہ الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی میں آپ آئیں, کیونکہ جب آپ ایک مریض سے ملتے ہیں آپ کا نظری بدنی معائنہ ہوتا ہے تو حکیم آپ کو ایک بہتر نسخہ ہے, ایک بہتر دوائی تجویز کر سکتا ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی جی جی ماسٹر صاحب,
2: میں نے
1: 6:30 ہے. ہاں ठीक है, हाँ मास्टर साहब ऐसा करें कि आपने जो MRI कराई है वो कल परसों आप आते हैं, क्योंकि हर दिन अशिफा दवाखाना खुला होता है, अपने रिपोर्ट्स के हमरा आप तशरीफ लाएं।
0: बाकी यूरिक एसिड इनका वाकई
1: है, यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है वाकई, मजीद आप सुने रेडियो जी हकीम साहब,
0: इनका यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है। अब मजीद जब ये है कि रिपोर्ट सामने आती है तो उसके मुताबिक और काफी चीजें सामने आ जाती हैं,
1: बिल्कुल ऐसी बात
0: और
1: है।
0: उसके बाद ही उस चीज का बेहतर तरीके से अंदाजा लगा,
1: ठीक है,
0: या उसको तशखीस करके फिर उसकी तजवीज भी होगी इंशाल्लाह। इतना नजर हुआ कि मास्टर साहब अफाका महसूस करेंगे।
1: ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, मेरे भाई आपका इलाज हकीम साहब आपको बताते हैं जी। हकीम साहब प्यारे भाई को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे, 45 साल उम्र है और मेरे ख्याल में गुस्सा इनको बहुत ही ज्यादा आता है।
0: आप तो माशाल्लाह अभी जवान हैं, जाहिर बात है बंदा बाज दफा स्ट्रेस में होता है,
1: ऐसी बात है। हाँ जी,
0: आजकल है माहौल ऐसा बना हुआ है हमारा,
1: फिजा ऐसे
0: हर आदमी तकरीबन जहनी तौर पर बहुत ज्यादा मुंतशिर हुआ है,
1: स्ट्रेसफुल हो,
0: स्ट्रेस है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी के बेशुमार शिकायतें मरीज हैं। बात यह है कि कोई भी मसला ऐसा नहीं है कि जो हल ना हो सके,
1: ऐसी बात है।
0: सिर्फ बात इतनी होती है कि आप उस चीज को देखें, समझें और उसके बाद अपना नतीजा अख़्ज़ करें।
1: बिल्कुल ऐसी बात है।
0: ऐसा मसला नहीं है कि आप पागल हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। आपका जहन अभी काम कर रहा है, आपका जिस्म आपके ताबे है, आपके मुताबिक काम कर रहा है, आप खाना खा रहे हैं, आप जिम्मेदारियां अपनी निभा रहे हैं,
1: ऐसी बात है।
0: सिर्फ फर्क यह है कि आपने शायद उसको जहन पे जो है वो बोझ लिया हुआ है, तो उसके लिए बेहतर तो यही है कि आप किसी भी दिन, मैं सुबह रोजाना 9 बजे से शाम 4 बजे तक क्लिनिक में मौजूद होता हूँ,
1: ठीक है,
0: आप किसी दिन भी वक्त निकाल के तो मुझे जरा 10-15 मिनट दीजिएगा ताकि मैं आपकी जो है हिस्ट्री वो भी सुन सकूं और उसके मुताबिक आपको उसका हल भी दूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप ये जो बहुत ज्यादा डिसऑर्डर हुए हैं,
1: ऐसी बात है,
0: इस चीज से आप बाहर निकल आएंगे और दोबारा फिर आप जिंदगी के सर्कल में दाखिल हो सकते हैं। ऐसा मसला नहीं है कि पागल हो जाए जिसका मतलब है कि वो सारा कुछ ही छोड़ दे,
1: ऐसी बात है,
0: ऐसा मुमकिन नहीं है। इलाज मौजूद होता है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो देने की और अपना वक्त निकाल के मिलने की जरूरत है,
1: ऐसी बात है। बिल्कुल सभी कुल खवातीनों हजरात, हकीम साहब कह रहे हैं कि आपका जो भी मसला है, बीमारी है, आप जब बिलमुशाफा आप जब क्लिनिक पर आते हैं, हकीम साहब से मुलाकात करते हैं, तो ऐसे तो हकीम साहब आपको नुस्खा टोटका बता देते हैं, लेकिन जब आप हकीम साहब से बिल्कुल बराह रास्त क्लिनिक पर मतलब पर आकर मिलते हैं तो हकीम साहब आपको एक अच्छा इलाज तजवीज कर सकते हैं, आपके मुआयना करके, आपकी नब्ज देखकर आपको एक अच्छी दवाई भी देंगे, एक अच्छा इंशाल्लाह आपका इलाज भी होगा और आपकी जो बीमारी इतनी पुरानी हो चुकी है इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएगी।
0: देखिए साहब, जी जी, मसला ऐसा ना के मशवरा माइक पे भी दिया जा सकता है,
1: जाहिर
0: बात है लिसनर हैं,
1: बैठे यहाँ पर मशवरे के लिए आना हैं
0: कि वो अपना कीमती वक्त निकालते हैं, बातें सुनते हैं,
1: ऐसी बात
0: उनका
1: है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया और मैं तहे दिल से उनका मशहूर भी। दूसरी बात यह है कि मशवरा माइक पे देना एक अनदेखी चीज को कि आपको कुछ नहीं आ रहा है ना, आप सिर्फ उससे उसके हरफ सुन रहे हैं, वो बता रहा है कि मुझे ये मसला है। असल मशवरा देना वो होता है जब आप आमने सामने होते हैं,
1: ऐसी बात है बिल्कुल,
0: क्योंकि आप जाहिर तौर पर उसके सामने मौजूद हैं, वो आपको देख रहा है, आपसे सुन रहा है और आपके दिल में भी उस टाइम जो सवाल जन्म ले, आप बेधड़क उसका मुआलिज से सवाल जवाब भी ले सकते हैं,
1: आप कर सकते हैं।
0: तो कोशिश यही किए कि आप कुछ वक्त अपनी जात के लिए निकाल लें और वो थोड़ा सा जो वक्त निकाला है हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत कीमती साबित हो जाए, आपको एक बेहतर राह दे दे और उस पे आपके लिए जो एक मुंतखब करना है,
1: ठीक है,
0: उसमें आसानी हो जाती है कि मेरे लिए ये सूटेबल है, मैं इसको اس رستے کو اختیار کروں یا نہ.
1: ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے. سامعین اکرام, اگر آپ کا بھی کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے کسی میرے بہن کا, کسی میرے بھائی کا, اور آپ کا سوال رہ گیا ہو تو چوہل شفا دواخانہ کا ہیلپ لائن نمبر ہے, وہ اپنے پاس نوٹ فرمائیں 0319

0: are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
3: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
4: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
5: Get funded up to $400,000.

0: तड़ाई माशे में जी दार तो ये पदशा पर सीधे तशा हो खस्ती थी
1: जनाते से तारखाना पशा पर के हमें इसमा वॉशिंग पाउडर हो खस्ती थी
0: इसमा वॉशिंग पाउडर मड़ाई में जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपनेवल वॉशिंग पाउडर बड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जी दस रंगे सरा पुरो रही
1: बिल्कुल तारखाना दा गिले हुए हर वक्त मुतहा कुर्श डाले हो चकराना में कुर्ता इसमा वॉशिंग पाउडर उड़ल से रिकड़े थी और स्टोल कुर वाला नकवाशोल थी
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर से रबरो तो दर इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियात थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियात दागा दी ची कपड़े सब यूशली को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सफाई पवात लो सीना न खर पाई
0: शाह मिस जी चे दम रक्षा रिजल्ट ये दाए दर तो दवा मोता चेरता मिला जी
1: तारे खाना दाओ तो दफ बने आंद्रोन लाकी गेट जान से बे गाले पर शोए मार्केट से देश में मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर तमिला विजी।

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Radio Pegam 97.8 Global FM 91 Dera Ismail Khan and Radio Aman 88.4 Dhaka. जी जनाब, तीन रेडियो स्टेशन और एक आवाज, और ये आवाज है जनाब केसर नेचर पाकिस्तान की, ये आवाज है सेहत की, ये आवाज है शिफा की, और ये आवाज है खूबसूरती की। जी जनाब, सुपहर के चार बजते ही जनाब आप अपने शहर के जी जनाब फेमस एफएम यानी कि डेरा में मौजूद हैं तो ग्लोबल एफएम 91, और अगर आप मौजूद हैं पहाड़पुर में तो रेडियो पैगाम 97.4, और अगर आप टांक में मौजूद हैं तो रेडियो अमन 88.4 के ऊपर सुनते हैं केसन की आवाज। केसन का मैटनी टाइम हम कहते हैं, केसन टी टाइम शो। तो जनाब, इन तमाम शहरों के अंदर मौजूद तमाम गर्ल्स एंड बॉयज, अंकल एंड आंटीज, चाचा चाचीज, मामे मामी, दादा दादीज एंड नाना नानी, सभी सुनने वालों को खलील ताबे शामान का सलाम, ढेर सारी नेक तमन्नाएं, ढेर सारा प्यार आप सभी के नाम। तो जनाब कैसे हैं आप सभी लोग? जनाब हमेशा की तरह मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह मैं अल्हम्दुलिल्लाह फाइन एंड शाइन, चमकता हुआ, दमकता हुआ, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ चहचहाता हूं, मेरे तमाम जाने वाले, तमाम दोस्त, तमाम फ्रेंड्स बिल्कुल भी इसी तरीके से खैरियत और अफियत के साथ होंगे, और आज का दिन बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। जनाब हमेशा की तरह ढेर सारी बातें, हाँ जनाब बहुत सारी बातें, कितनी बातें हम आप लोगों के साथ करते हैं इस घंटे के अंदर, और जितनी बातें भी करते हैं आप यकीन कीजिए कि वो सारी की सारी जो होती है ना, वो आपके फायदे के लिए होते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके डिपेंड करता है कि आप कौन सी मुफीद बातों को अपने पल्लू के साथ बांधना चाहते हैं, और कौन से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना चाहते हैं। जनाब एकदम फिर से पहाड़पुर वालों को जनाब ज्वाइन करने के ऊपर ढेर सारा वेलकम, और पहाड़पुर मेरी जान है, पहाड़पुर के लिसनर मेरी जान है, मेरी कंपनी की पहचान है, मेरी कंपनी की शान है। जी जनाब, चार दिनों की दूरी के बाद जो है बिल आखिर एक दफा फिर से मेरी आवाज जो है आज पहाड़पुर वालों को सुनने को मिल रही है। अपग्रेडेशन कम्प्लीट हुई है 97.4 की, एंड होपफुली की जनाब आज 97.4 पर आप मेरी आवाज को बहुत ही प्यारा सुन रहे होंगे, बहुत ही क्लियर और नीट सुन रहे होंगे, और दूर दराज के इलाकों से भी मुझे सुन रहे होंगे। तो जनाब अगर आप किसी ऐसे एरिया में मौजूद हैं कि जहां पर आपको पहले 97.4 नहीं आता था, और अगर आज आपको आवाज आ रही, मुझे स्पेशली बताएंगे पंजाब के लोग जो जनाब बिलोट के आसपास रहते हैं, चश्मा के आसपास रहते हैं, मियांवाली के आसपास रहते हैं, कलूरकोट से आगे रहते हैं, ठीक है जनाब, शालम में रहते हैं, दरिया खान और बक्कर से आगे के इलाकों में, और इसके अलावा चहकान के इलाकों में, या फिर हिम्मत और इनके इलाकों में जहां पर पहले हमारी आवाज बहुत अच्छी जाती थी 97 की, तो बताएंगे आज के भाई अपग्रेडेशन कितनी सक्सेसफुल हुई है 97.4 की मैनेजमेंट की, कि जनाब चार दिन हमारा एफएम बंद रहा, इस वजह से कि जनाब आप लोगों तक जनाब जो है रेडियो पैगाम का पैगाम जो बहुत अच्छी तरीके से जा सके। तो जनाब पहाड़पुर के बासी जो यूजर है वो हमें जरूर आज बताएंगे कि भाई क्या वाकई आपकी हम रेडियो पैगाम की आवाज को आप तक पहुंचाने में सफल हुए हैं, और कितने हुए हैं, और कौन से नए इलाकों में जो है रेडियो पैगाम 97.4 को सुना जा रहा है।

जी जनाब, केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप डिमांड ज्यादा होने की वजह से, पॉपुलैरिटी ज्यादा होने की वजह से, लोगों को फायदा ज्यादा देने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉपुलर ब्रांड बन चुका है इस वक्त मार्केट का। और ये वो प्रोडक्ट है जनाब, केसन की जो हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है ना, ये दवाइयां नहीं है भाई, ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। ठीक है जनाब, ये सप्लीमेंट है कि हम आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट से आप लोगों को शिफा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये वो प्रोडक्ट है जो आप बगैर डॉक्टर के कंसल्टेशन के इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है जनाब, ये कोई केमिकलाइज चीज ऐसी नहीं है जैसे कि आपने दर्द वाली गोली ले ली अपने अपनी तरफ से, और वो चूंकि केमिकलाइज फार्मूला है उसने केमिकल एक्शन दिखाना है आपके बॉडी के अंदर, तो वो आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन केसन के जो प्रोडक्ट है, जैसे वेट कम पेट कम है, जैसे हमारा शिफाए दर्द है, जैसे गो पिंपल है, या फिर जैसे हाजमा कंट्रोल सिरप है, ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। ठीक है जनाब, आप विदाउट कंसल्टेशन के भी इसको यूज कर सकते हैं। और ये गर्मियों के लिए बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि गर्मी के अंदर जितने मैदे के मसाइल बढ़ते हैं सर्दियों के अंदर नहीं बढ़ते हैं। उस दिन पे मैं आपको बता रहा था कि जनाब गर्मी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो जरासीम होते हैं, उनकी अफजाइश बहुत तेजी के साथ होती है, उनकी प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं, प्रोडक्शन नहीं होती है, रिप्रोडक्शन जो होती है रिप्रोडक्शन, वो बहुत जल्दी होती है। गर्म और मरतूब मौसम में खाने पीने की अशिया आप देखते हैं कि अक्सर जनाब बैक्टीरिया, जैसे कि साल्मोनेला एक बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी, जिन्होंने मेडिकल पढ़ी होगी तो उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा ये बैक्टीरिया बहुत नुकसानदेह होते हैं, साल्मोनेला टाइफी और साथ में इकोलाई पी मुरब्लस। ठीक है, ये दो तरह के बैक्टीरिया हैं जो कि गर्मी के अंदर आपके घरों के अंदर घुस जाते हैं जनाब। ठीक है जनाब, जबरदस्ती गुजर जाते हैं, खाने पीने की अशिया में चले जाते हैं, और फिर क्या होता है कि जनाब बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। सबसे बड़ा फूड पॉइजनिंग होता है कि जनाब खाना खाते हैं तो जहर बन जाता है, जहर फूड पॉइजनिंग हो जाती है। बहुत सारे लोग खाना जब खाते हैं तो कुछ देर के बाद वो कुछ ऐसा होता है कि आपकी कोई चीज बाहर पड़ी होती है, ये साल्मोनेला टाइफी और पी मुरब्लस इकोलाई, इकोलाई आई थिंक अगर मैं भूल नहीं रहा था, इकोलाई जो है नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, सो उसमें ये जो साल इकोलाई है ये बहुत खतरनाक होता है। तो ये आपकी पड़ी हुई चीजों में जब चला जाता है और खाना खा लेते हैं तो क्या होता है जनाब के आपके आपको फिर खट्टे डिकार आना शुरू हो जाते हैं, आपको कड़वा सा कुछ लिक्विड आपके मुंह को आता है, वो फूड पॉइजनिंग होती है, आपका खाना जो है जहर बन चुका होता है। अब ऐसी सूरत हाल में भी आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर के पास चले जाएं, लेकिन उससे पहले हम आपको कहेंगे कि अगर आपके पास हाजमा कंट्रोल सिरप पड़ा है और आपको लग रहा है कि फूड पॉइजनिंग आपको हो गई है और खट्टी डिकारें शुरू हो गई है और अंदर का लिक्विड आपकी खुराक की नाली से मुंह की तरफ आ रहा है, बहुत ही खट्टा है, ठीक है जनाब, इसका मतलब फूड पॉइजनिंग आपको हो गई है, तो आप हाजमा कंट्रोल पियेंगे तो जनाब अगले 10 मिनट के अंदर शांत होंगे। अगले 10 मिनट के अंदर आज कौन हमारे पास आया हुआ था केसन शॉप पर, शाह साहब इस तक सुन रहे होंगे दराबन चुंगी से मेरे ख्याल में उनका, और वो आए हुए थे हफ्ता पहले, वो शिफाय दर्द लेके गए थे, हमारे साइलेंट लिसनर है, और आज फिर वो हाजमा कंट्रोल लेने के लिए आए हुए थे। तो वो कह रहे थे कि भाई मैं जो शिफाय दर्द लेकर गया हूं ना, यकीन कीजिए कि मेरी बीवी 80% ठीक हो चुकी है, वो लंगड़ा के चलती थी पहले, ठीक है जनाब, और बड़ा मसला था, तो मैंने जैसे इस्तेमाल किया है तो आप यकीन करें कि वो खुश हो रहे थे, लव मैरिज थी उनकी, तो लव मैरिज में तो फिर वैसे मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत होती है, और किस्मत वाले हैं कि उनको मर्जी की मिल गई, तो हाँ जी, और माशाल्लाह इस उम्र में जिस उम्र में वो थे माशाल्लाह मेच्योर उम्र थी, उसमें भी इतना ही ख्याल रखने अपनी बीवी का, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को हमेशा सलामत रखे, तो वो बहुत खुश थे। बेसिकली तो पार्टनर की खुशी उनके चेहरे के ऊपर झलक रही थी कि मेरी बीवी माशाल्लाह ठीक हो रही है, 80% कहते हैं कि उनके जोड़ों का दर्द खत्म हो गया, तो उनके मैदे का मसला रहता है, तो मैं इंतजार में था कि ये हाजमा कंट्रोल कब आएगा, तो मैंने उनको, अच्छा जी अभी जो ये हमारा नया बैच आया है आप लोगों के पास, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है पहले हाजमा कंट्रोल से, फार्मूला वही है, सब कुछ वही है, इसको हमने मजीद बेहतर किया, एक तो ये व्हाइट होगा अब, ठीक है जनाब, व्हाइट ओपिक है, ठीक है जनाब, और साथ में क्या होगा कि ये गाढ़ा है, पहले जो आप सिरप आपको मिल रहा था ये उससे बहुत इंप्रूव किया हमने, तो कीमत कम की है लेकिन इसकी क्वालिटी को बहुत बेहतर किया हमने। ये जब आप पियेंगे ना आपको पता चलेगा कि भाई ये क्या चीज इन्होंने लॉन्च कर दिया, रीलॉन्च यू सब, सेकंड बैच आ रहा है हमारा आप लोगों के पास ना, एक तो आप ये पहले ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा हल्का ग्रीन होता था, अभी जो है ना ये बिल्कुल व्हाइट होगा, बिल्कुल व्हाइट और गाढ़ा, पहले से ज्यादा ये गाढ़ा होगा, यानी कि मुंह में डालेंगे तो ढक्कन के अंदर शहद की तरह रह जाता

0: सकता है, फिर से खाली नहीं होता। तो ये पहले से ज्यादा महंगा है, लेकिन आपको हम बचत दे रहे हैं। आप ये पियेंगे तो आप मुझे बताएंगे कि आपको ये जो इम्प्रूव हमारा फार्मूला है हाजमा कंट्रोल का, ये कैसे लगा। अच्छा, तो वो भाई कह रहे थे शाह साहब कि भाई मैं इसलिए, फिर मैंने उनको पिलाया, उसी वक्त एक चम्मच पिलाया मैंने, क्या बताएं, कहते हैं अंदर तक ठंडक। बस आरजे तासीर जो पहले आप हमारे साथ प्रोग्राम करते थे, अभी वो नहीं करेंगे प्रोग्राम, क्योंकि उन्होंने उन्होंने किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लिया है और वो उसका प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है जनाब, तासीर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका बेहद शुक्रिया, उन्होंने वक्त निकाला, ईद के दिनों में आए और मेरी छुट्टियां के बावजूद उन्होंने टाइम दिया अपनी छुट्टी को इल्तवा में डालकर। तो लेकिन अभी वो केसन का प्रोग्राम हमारे साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने किसी और कॉस्मेटिक कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट किया है, तो वो अभी उनके साथ रेगुलर प्रोग्राम करेंगे ना। यहाँ तो वो भाई बिरादरी के ऊपर आते थे ना, यानी कि दोस्त थे मेरे, तो मैं उनको बुला लेता था कि दो तीन दिन के लिए आ जाओ, तो वो आ जाते थे। तो अभी वो किसी कंपनी के साथ प्रॉपर काम करेंगे। ठीक है जी, उनका अगेन बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगा। तो वो भी बैठे थे उस वक्त, उनको फिर मैंने एक चम्मच पिलाया, वो कहते यार जैसे उन्होंने पिया ना चम्मच हाजमा कंट्रोल का, तो 10 मिनट बाद बोला यार ये तो हलक से लेकर ये तो पूरे जिस्म के अंदर ठंडक फैल गई है, क्या चीज है इसके अंदर यार, ये तो मुकम्मल तौर पर कहता है कि मेरी पूरे खुराक की नाली से लेकर मैदे तक बिल्कुल ऐसे लग रहा है किसी ने बर्फ डाल दी। तो मैंने कहा ये इलायची, पुदीना, यूकलिप्टस, सौंफ का बहुत ही जबरदस्त किस्म का फार्मूला है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। ठीक है जनाब, और मैं कहता हूँ कि हर घर के अंदर ये होना चाहिए भाई, डिस्प्रीन घर में रखते हैं, पैनाडॉल घर में रखते हैं, तो भाई केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप अपने घर के अंदर जरूर रखें। एक तो फूड पॉइजनिंग होती है गर्मी के अंदर बहुत ज्यादा, पानी की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, पानी की पसीना होता है, पसीना के जरिए जिस्म से पानी और नमकियात तेजी से निकल जाते हैं, पानी की वजह से आंतों की कारकर्दगी सुस्त हो जाती है। आपके बॉडी के अंदर जितना पानी होगा ना, आपकी आंतें उतना काम करती हैं, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, निजामे इंतजाम, उसमें आपकी आंतों का काम होता है ज्यादातर। तो जितना पानी होगा ना आपके पेट के अंदर, तो आंतें पानी के अंदर जितना रहेंगी उतना अच्छा काम करेंगी, क्योंकि पसीने के थ्रू सारा पानी आपके जिस्म से निकल जाता है, तो कारकर्दगी बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाती है, आंतों की डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, कब्ज हो जाएगी, बहुत ज्यादा कब्ज लोगों को गर्मी में होती है। ठीक है जनाब, और इसकी वजह ये होती है कि आंतों में पानी नहीं होता। ठीक है जनाब, पसीने की सूरत में निकल जाता है, शदीद कब्ज और तेजाबियत का बायस बनती है जब पानी की कमी आपके जिस्म के अंदर होती है। तो जनाब हाजमा आपका मुतासिर होगा, अनकंट्रोल होगा जनाब, और कहते हैं कि हाजमे का निजाम सुस्त हो जाता है शदीद गर्मी में। जिस्म अपना दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए खून का जो बहाव होता है ना, जिल्द की तरफ ज्यादा और मैदे की तरफ कम कर देता है। ये भी एक नई बात है भाई, ऐसी ऐसी बातें कौन बताएगा आपको। हां जी, डॉक्टर लोग हैं हम यार, पढ़े लिखे लोग हैं। जिस्म अपना दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए खून का बहाव जिल्द की तरफ तो करता है, लेकिन मैदे की तरफ खून की रवानी को मुतासिर कर देता है, जिसकी वजह से बदहजमी और खाना देर से हजम होगा। गर्मी में एज कम्पेयर सर्दी जो है, गर्मी में आपका हाजमा बहुत सुस्त हो जाता है, और ये वजूहत होती हैं जिसकी वजह से आपको हाजमा कंट्रोल सिर्फ केसन का घर में जरूर रखना चाहिए। कुदरती तौर पर गर्मियों के अंदर रुक जाता है, किसी डॉक्टर से जाके पूछते हैं भाई खलील भाई तो कह रहे थे कि गर्मी के अंदर जो है हाजमा सुस्त हो जाता है, मैदा काम तो सही नहीं करता, हाजमा ठीक नहीं होता। पूछ लें उसे कि खलील भाई गलत तो नहीं कह के गए, वो कहेंगे कि खलील भाई बात भी ठीक कह रहे थे, और वो जो कह रहे थे ना कि हाजमा कंट्रोल भी घर में रखो तो वो भी ले जाओ। ठीक है जनाब, अच्छा फूड पॉइजनिंग गैस्ट्रो का मैंने आपको बता दिया, खराब खानी और आलूदा पानी भी डायरिया का सबब बनता है। गर्मी में बहुत ज्यादा लोगों को पेट खराब होता है, बहुत ज्यादा पेट खराब होता है, ये वजह होता है कि जो बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन हो रही होती है, अफजाइश बहुत तेजी के साथ होती है, और वो खानों में घुस जाते हैं, पानी के अंदर घुस जाते हैं, आपकी दूध खराब हो जाता है, खाने खट्टे मीठे हो जाते हैं, तो वजह यही होती है कि गर्मी में जरासीम बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो जनाब गर्मियों में तली हुई मिसालादार अशिया, सॉफ्ट ड्रिंक का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, गर्मी में बहुत ज्यादा लोग कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे जनाब, कोल्ड ड्रिंक्स आपके तेजाबियत को बढ़ाती हैं, और जिसकी वजह से आपको मैदे के मसाइल बहुत ज्यादा तेजी के साथ, यही वजह होती है कि फिर मैदे का भारीपन महसूस होगा, खट्टी डिकारे वगैरह आपको आएंगे, हैजे के मसाइल हैं। ठीक है जनाब, ये सारी चीजें। सो कुल मिलाकर बात क्या है जनाब आप लोगों के सामने, वो ये है कि जनाब गर्मी जो है ये सिर्फ आपकी स्किन को खराब नहीं करती है, कि हम आपको बोलते हैं जाफरानी साबुन लगाएं भाई चेहरा साफ रहेगा, ठीक है जनाब, सूर्य की श्वाएं आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अच्छा, एक और प्रोडक्ट हमारी शार्ट थी जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, एक तो हाजमा कंट्रोल की बहुत ज्यादा डिमांड थी, एक प्रोडक्ट जो हम गर्मियों में स्पेशली बहुत ज्यादा हमारी चलती है वो ब्यूटी स्प्रे है, स्किन टोनर। मुझे दुकानदारों के बहुत सारे कॉल, जैसे फ्रेंड्स एंड फैमिली शॉपिंग सेंटर, जैसे कि जीशान, जैसे कि नवीद पहाड़पुर की बात कर रहा हूँ, ठीक है जनाब, जैसे कि हसीब जनरल स्टोर, जैसे कि हैदर, जैसे कि हसन भाई, सबकी तरफ से ऑर्डर आए हुए थे कि ब्यूटी स्प्रे बहुत ज्यादा लोग मांग रहे हैं। तो भाई ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको पता है कि भाई सिर्फ गर्मी में सिर्फ साबुन से मुंह नहीं धोना है, सिर्फ फेस वॉश से मुंह को नहीं धोना है, बल्कि केसन का ब्यूटी स्प्रे इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब ये लगाकर आप घर से बाहर निकलेंगे तो गर्दोगुबार, सूरज की तपिश आपकी स्किन को खराब नहीं कर पाएगी, ठीक है जनाब, क्योंकि ये विटामिन सी और अर्के गुलाब से बना हुआ एक मिक्सचर है जो अर्के गुलाब आपकी स्किन को तरोताजा रखता है, मुरझाने नहीं देता, आपकी झुलसी हुई स्किन, तली हुई स्किन, ठीक है जनाब, हरारा से भरी हुई स्किन को ये ठंडक प्रोवाइड करता है अर्के गुलाब की सूरत में, और विटामिन सी जो है वो सूरज की खतरनाक शोई को रोकता है। तो ये भी अवेलेबल हो चुका है हर जगह, ठीक है जनाब। आप जो जो मेरी बहनें मांग रही थी और ब्यूटी स्प्रे जिन जिनको नहीं मिल रहा था, आज हर जगह हमारा केसन का ब्यूटी स्प्रे जो आपको सिर्फ 200 रुपए में मिलता है, ठीक है जनाब। विटामिन सी और अर्के गुलाब से बना हुआ ये स्किन टोनर है, और गर्मी में ये आपने ऊपर फर्ज कर लीजिए, इसके बगैर आपने घर से निकलना ही नहीं है, इसके बगैर आपने घर से निकलना ही नहीं है जब तक केसन ब्यूटी स्प्रे को स्किन के ऊपर लगा के नहीं जाएंगे। और मैं यकीन कीजिए, आज मैंने प्रोग्राम आप लोगों के साथ थोड़ा सा हटके करना था, लेकिन चलो कल उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। लेकिन मुख्तसर आज मैं आपको बताता चलूं, मेरी तो वो तमाम बहनें जिनकी छाइयां जाती हैं और फिर वापस आ जाती हैं, जिनकी छाइयां जाती हैं और फिर वापस आ जाती हैं, मैं उनको ये बोलूंगा कि वो क्रीम जो भी लगा रही हैं, हम ये नहीं जबरदस्ती कहते कि केसन की क्रीम लगाएं, केसन की लगाएंगे तो आपका अपना फायदा है, क्योंकि ये वाहिद क्रीम है जो जाफरान से बनी हुई है, जो कि आपकी स्किन के ऊपर गैर जरूरी बालों का खात्मा करती है, ठीक है जनाब, जो कि आपकी स्किन के ऊपर जो गैर जरूरी बाल है उनकी ग्रोथ को रोकती है, क्योंकि इसके अंदर जाफरान मौजूद है। लेकिन अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा रहे तो जो भी क्रीम लगा रहे हैं ना, जो भी इस्तेमाल करें उसके साथ स्प्रे केसन का यूज करें, केसन का ब्यूटी स्प्रे, आपकी छाइयां वापस नहीं आएंगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। कोई भी क्रीम उठा के देख लो, कोई भी ब्रांड आप यूज करते हैं, कोई भी एक्स वाई, ठीक है जनाब, आप दिन के वक्त दो दफा ब्यूटी स्प्रे केसन का इस्तेमाल करें, दो दफा यूज करें, अगर आपकी छाइयां वापस आ जाएं, हालांकि क्रीम आप हमारी नहीं, हो सकता है हमारी लगा रहे हो, लेकिन अगर कोई भी लगा रहे हैं तो गारंटी हम दे रहे हैं आपको, क्रीम किसी और की लगा रहे हैं ना आप, लेकिन गारंटी हम आपको दे रहे हैं कि छाइयां वापस नहीं आएंगी अगर डे टाइम में आप केसन ब्यूटी स्प्रे को दिन में दो दफा इस्तेमाल करेंगे। ये कहानी क्या है ये आपको कल बताएंगे कि जनाब किस तरीके से ये छाइयों को रोकता है केसन ब्यूटी स्प्रे,
1: मतलब
0: लेकिन मतलब क्या है,

अब ये जो तेजाबियत बदहजमी फूड पॉइजनिंग का शोर है इसका तोड़ है आप लोगों के पास और वो केसन केसन का हाजमा कंट्रोल सिर्फ की सूरत में मौजूद है। कीमत को हमने कम कर दिया जनाब, सिर्फ 150 रुपए का आपको मिलेगा। इसके ऊपर रेट मेंशन है जनाब, और पहले से ज्यादा गाढ़ा, पहले से ज्यादा ठंडक देने वाला, पहले से ज्यादा अच्छा सिरप बनाकर हमने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, जो कि इस दौर का एडवांस फार्मूला है। बिल्कुल जनाब, और इतनी क्वांटिटी चीजों के अंदर है कि अगर आप 24 घंटे में सिर्फ एक चम्मच भी इसका लेंगे तो मैदे के अंदर गर्मी नहीं होगी, बदहजमी नहीं होगी, गैस नहीं होगा, तेजाबियत नहीं होगी। तो जनाब इस प्रोडक्ट के ऊपर टूट पड़े, खरीदे नहीं जनाब, टूट पड़े इसके ऊपर और देखें कि जनाब ये सिरप, सिर्फ एक चम्मच 24 घंटे में, वो लोग जिनको मैदे के मसाइल का शिकार है, जैसे कि उनको बदहजमी हो जाती है। अच्छा, ये भूख लगाने में बहुत जबरदस्त है, किसी को भूख नहीं लगती तो जैसे अगर दोपहर का खाना खाना है तो 10 बजे इसके 2 चम्मच ले लें, रात का खाना है तो असर के वक्त 2 चम्मच ले लें, फिर आप देखें कि आप कितना खाना खाते हैं। बहुत ही जबरदस्त एपेटाइजर है। बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, भूख लगाने वाले अलहदा से सिरप बनाती हैं और हाजमे को ठीक करने वाले अलहदा से सिरप बनाती है, यानी कि डबल डबल पैसे कमाती है। हमने एपेटाइजर प्लस एंटासिड फार्मूला बनाया है। केसन का ये जो हाजमा कंट्रोल सिरप है ये एपेटाइजर प्लस एंटासिड है, यानी कि ये भूख लगाने वाला भी सिरप है और साथ में आपके मैदे को ठंडक, आपके मैदे को सुकून, आपके मैदे को आराम पहुंचाने वाला, आपकी तेजाबियत को, जलन को, गैस को खत्म करने वाला केसन का हाजमा कंट्रोल।

फातिमा हमारे साथ पहाड़पुर से मौजूद हैं। कहते हैं भाई एफएम की आवाज पहाड़पुर में बहुत साफ आ रही है, पहले से भी ज्यादा साफ। भाई एफएम की सब भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो, यानी कि ये सराउंडिंग का एरियाज जो है पहाड़पुर वाले भाई, उनको अब माशाल्लाह आवाज क्लियर हो गई है। तो बिल्कुल जी मुबारक के मुस्तहिक है टीम रेडियो पैगाम पहाड़पुर के, उनका फोकस अपने सामीन तक अपनी आवाज को बहुत ही क्लियर और साफ पहुंचाना है। और ये एक एफएम की बुनियादी जो जरूरत भी होती है और लिसनर्स का जो बुनियादी हक भी है वो यही है कि हमारे सामीन तक, हमारे लिसनर तक, हमारे मीडियम की, हमारा जो भी फ्रिक्वेंसी है, चाहे पहाड़पुर में 97.4 है, डेरा में ग्लोबल एफएम 91 है और टांग में 88.4, ये सारे एफएम यहाँ के सामीन को हमारी आवाज बगैर किसी दिक्कत के सुनाई देनी चाहिए। और चाहे वो कमरे के अंदर मौजूद हो, चाहे कमरे के बाहर मौजूद हो, जहां पर भी बैठे हैं, उनको किसी किस्म की दिक्कत ना हो कि जनाब वो जगह चेंज करें। सिग्नल्स की फरावानी इस तरीके से होनी चाहिए। तो आई थिंक रेडियो प्रोग्राम के मैनेजमेंट दाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने अपनी

0: ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम लुटेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमल 88.4 डांस की नशिया। हमारे साथ रहिए, हमारे साथ रहिए।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जुकुन फयकून का मालिक है, एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमल 88.4 तांकी नशरिया। हमारे साथ रहिए।

वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
1: इल्म आगाही तंज मजा और खुशहाली इस्तेहकाम का हसीन संगम, आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग।
2: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है, ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है, ये आवाज है जो अमन की है, ये वो पैगाम है जो अमन है, रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।